की ताजातीन तजवीज को भी इससे मतलूबा हद तक न होने का कहते हुए मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वजारत खारजा ने शाम की तरफ दिफाई बरामदात पर आर्जी पाबंदियों को खत्म करते हुए तजारत को मामला बुनियाद पर देखा जाने का ऐलान किया है। वजारत ने बताया बैन अल-अक़वामी असला तजारत जाब्ता में की गई तब्दीली के नतीजे में शाम को दिफाई साजोसामान और सर्विसेज के लेन देन लाइसेंसों की मुस्तरदगी की फहरिस्त से खर्च कर दिया गया है। फेडरल रजिस्टर में शाया होने वाले हतमी जाब्ता में कहा गया है कि तब्दीली वज़ीर ख़ारजा के 19 अगस्त 2026 को तय करदा दिफाई तजारत पॉलिसी के फैसले के मुताबिक की गई है। नई पॉलिसी के तहत शाम को दिफाई सामान और खिदमात मुंतकली की दरख्वास्तों को इदार की जानब से पहले नाफज करता फौरी मुस्तरद पॉलिसी के बजाय हर मामले की अलहदा जांच करके लाइसेंस का इजरा किया जाएगा। ऐलान में बताया गया कि हैसियत की तब्दीली दहशतगर्दी की हमायत के फैसले की मनसूही समेत जरूरी कानूनी शराइत की तकमील मुतलका अमरीकी कवानीन के तहत बास पाबंदियों से छूट के बाद अमल में आई है। याद रहे अमरीका ने शाम के लिए पहली दिफाई तजारत पाबंदी 29 दिसंबर 1979 को नाफिज की थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूरोप पर हमला करने का इरादा नहीं रखते और कहा कि अगर कालिनिनग्राद समेत रूस पर बराह रास्त हमला हुआ तो हमारे मुल्क के पास मौजूद तमाम हथियारों के इस्तेमाल का मामला नागजीर और फौरन जेरे गौर आ जाएगा। व्लादिमीर पुतिन ने दारकूमत मास्को में मुनक्कित होने वाली बैन अल-अक़वामी वलादी मुबासा क्लब की सालाना नशिस्त में रूस यूरोप मल्क के मबैन कशीदगी समेत यूक्रेन में जारी जंग के बारे में अपने ख्याल का इजहार किया। रूसी वजारत खारजा के कालिनग्राद के बारे में बयान पास मालों को रवाना करदा खतूत में शामिल अबारतों का दिफा करते हुए पुतिन ने कहा अगर रूस से मुस्लिक किसी भी इलाके पर बराह रास्त हमला हुआ तो हमारे मुल्क के पास मौजूद तमाम हथियारों का इस्तेमाल नागजीर और फौरी माहियत इख्तियार कर लेगा। पुतिन ने जोर देते हुए कहा वो किसी मुल्क को धमकाने का इरादा नहीं रखते और कहा हम किसी को डराते नहीं। रूसी वजारत खारजा का बयान और बास ममालिक को भेजे गए खतूत धमकी देने के लिए नहीं बल्कि हमारे खिलाफ धमकाने की कोशिश का जवाब है। पुतिन ने याद आया कि हम किसी पर हमले का मंसूबा नहीं बना रहे, ना 2029 में, ना 2030 में और ना ही 2050 में हमारे पास ऐसा कोई मंसूबा है, मगर अगर हमला हुआ तो हमें जवाब देना ही पड़ेगा। यूरोपी ममालिक के शहरी ये बात वाजह तौर पर समझनी चाहिए कि हमारे मौकफ में ममालिक के बाद सियासी हुक्मरानों के मौकफ में फर्क मौजूद है। पुतिन ने बताया रूस के सामने एक फरीक है जिसकी आबादी रूस से दोगुना है, जिसके पास बड़ी इक्तिसादी और अस्करी सलाहियत मौजूद है। वो कहा ऐसे खतरे के मुकाबले में हमारी ताकत वसाइल महदूद रहेंगे, इसलिए हमें अपनी बढ़तरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। गजा में कमाल अदवान अस्पताल के जेर हरासत डायरेक्टर डॉक्टर हसाम अबू सफिया को यूरोपीय पार्लियामेंट के 2026 के सखारोफ आजादी फिक्र अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया है। फलस्तीनी माहिर तफाल को दिसंबर 2024 से बगैर किसी इल्जाम या मुकदमे के इसराइल हिरासत में रखा गया है। इसराइल का इल्जाम है कि इसका हमास से ताल्लुक है। इस इल्जाम को इसके अहले खाना वकला मुस्तरद करते हैं। इंसान हकूक के अवार्ड्स के फातिह का ऐलान 22 अक्टूबर को किया जाएगा। जनूबी कोरिया यूक्रेन के माबैन जंगी कैदियों का बहरान बढ़ता जा रहा है। जनूबी कोरिया के सदर ली जे मियुंग ने शुमाली कोरिया के दो जंगी कैदियों की सियोल भेजे जाने के बारे में आमीन सतह पर इंकशाफ करने पर कीव से बाज़ाब्ता माफी मांगने का मुतालबा किया। ली ने कहा अगर यूक्रेन ने कार्रवाई नहीं की तो अजाफी इकदाम किए जाएंगे और कीव पर जज़ीरा कोरिया में कशीदगी बढ़ाने का इल्जाम आयद किया। यह बहरान उस वक्त शुरू हुआ जब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कौन था कि जनरल असेंबली में कैदियों की मुंतकली का ऐलान किया था। सियोल ने फौजियों के अहले खाना की हिफाजत के लिए मुंतकली को खुफिया रखने की खातिर मुहत्ता करने का दिफा किया था तो कीफ ने ऐसे किसी भी मुहदे की तरदीद की है। अगरचे यूक्रेन की वजारत खारजा सूबा के सफारती को अलगफहमी करार दिया लेकिन सियोल ने इस बयान को मुस्तरद कर दिया। लिथुआनिया के सदर ने मुनज़्ज़म मुस्लिम मुखालिफ हमलों पर खबरदार किया है। लिथुआनिया के सदर गितानास नौसीदा ने खबरदार किया हालिया इस्लामोफोबिक वाकयात अलग थलग कार्रवाई के बजाय एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। ये तबसरे वेलेंस में कुरान मजीद को सरेआम नजर आतिश करने और एक मस्जिद के बाहर मुसलमानों की नमाज के दौरान सुअर के सर को इस्तेमाल करते हुए इहतजाजी मुजाहरे के बाद सामने आए हैं। दोनों वाकयात की तहकीकात शुरू कर दी गई है। नौसेना ने माल को मजहबी खतूत पर तकसीम करने के खिलाफ खबरदार किया और पुरअम बकाए बाहमी पर जोर दिया। हवाई खलाई और टेक्नोलॉजी फेस्टिवल सुबह शानुल्फा के गाप हवाई अड्डे पर मुनक़िद हो रहा है। कई बसरी शोज की मेजबानी करने इस फेस्टिवल में तुर्किया लोक रक्स फेडरेशन की परफॉर्मेंस टीम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के रवायती रक्स टेक्नोफेस्ट ज़ाहिरीन के लिए पेश करेगी। जदीद टेक्नोलॉजी सिमुलेशन से लेकर साइंसी वर्कशॉप नुमाइशों तक हर उम्र के शुरका के लिए प्रोग्राम पर मुश्तमिल बड़ा इवेंट फजाई और दिफाई सनत के हवाई मुजाहरों की भी मेजबानी करेगा। इस मेले में आज तुर्किया फजाइया की करतबी टीम सोलो तुर्क अपना पूरा एहतशाम शो पेश करेगी। फेस्टिवल में इसके अलावा स्टेज परफॉर्मेंस नुमाइशें तालीमी वर्कशॉप सिमुलेशन तजर्बाती इलाके प्लानटेरियम साइंसी शोज टेक्नोफेस्ट का टाइम टनल कौमी पहली जमीनी हवाई गाड़ियों की नुमाइश फेर तकरीबात तलबा के लिए खसूसी पहली परवास प्रोग्राम जैसे मुतद शोज जायरीन के लिए पेश किए जाएंगे। फेस्टिवल का तीसरा दिन कॉन्सर्ट के साथ इख्तिताम पजीर होगा। साउथ ईस्ट टेक्नोफेस्ट मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा।
1: इसराइल के शुमाली शहर हाइफा के करीब एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इसराइल के शुमाल में शाहराह नंबर 65 के करीब गिरने वाले इस तैयारे में सवार एक शख्स हलाक जबकि दूसरा शरीर जख्मी हो गया जिसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। तैयारे गिरने के बाईस जाए हादसे पर आग भड़क उठी। हादसे की वजूहत के बारे में ताहाल कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। तैयारे गिरने से शाहराह नंबर 65 को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और आवाम को इस इलाके से दूर रहने की हिदायत की गई है। बताया गया है कि हादसे का शिकार यह तैयारा जरिए मकासद के लिए इस्तेमाल होता था। इसके साथ ही सदाए तुर्किया से खबरें खत्म हुई।
0: सालम सदाए तुर्किया की उर्दू सर्विस से मुखातिब हैं। लीजिए अब आयशे गुल आलदीन जो साथी से एक तुर्की नगमा सुनते हैं। गाने के बोल हैं यिल्दिज़लर।

इस नए दौर में अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए कोशिशें हैं। इस महल पर लड़ाका तैयारे टैंक मुसल्ला ड्रोन और इंतहाई जदीद मिसाइल हम सब के सामने हैं। ये ख्याल किया जाता है कि जिसके पास भी बेहतरीन असलाह है वो बालादस्ती हासिल करेगा। तमाम माहरीन का ख्याल है कि मुमकिन है कि दुरुस्त ना भी साबित हो। खासतौर पानी के अंदर आगे बढ़ने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल सारे कुरर्स की कम्युनिकेशन डाटा का बोझ उठाती हैं। मुसावात फौरी तौर पर बदल सकती है। ये एक बहुत खटन अमल शुरू कर सकता है जहां हर किसी को शिकस्त का सामना करना पड़े। नॉर्वेज मीडिया की हालिया खबर काफी काबिल तवज्जो थी। मुबैना तौर पर रूसी अफवाज ने नॉर्वे के खुले समंदर में सबसे अहम समुद्री केबल्स को गैर फाल करने के लिए किस नई टेक्नोलॉजी का टेस्ट करने की कोशिश की। अमेरिकी नेटो अनासर को इलाके में तैनात किया गया। रूस का हदफ होने का ख्याल पाए जाने वाली 1400 किलोमीटर तवील दो फाइबर ऑप्टिक केबल्स को फिलहाल कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये अया है कि हम आइंदा के याम में इस मसले पर अक्सर बेशतर बात करेंगे। अगर समुद्र की तह मौजूद फाइबर ऑप्टिक केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो इसके असरात क्या होंगे? साइबर डिप्लोमेसी इंटेलिजेंस स्टडीज सेंटर की कोऑर्डिनेटर क्युब्रा उज़दैन इस मामले की करीब से पैरवी कर रही हैं। उनका कहना है कि ज़ेर समंदर ऑप्टिकल केबल्स दरअसल अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फैले हुए एक आलमी नेटवर्क को तश्कील देती हैं। तकरीबन 99% आलमी डेटा ट्रैफिक इंटरनेट मौसलात ज़ेर समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए सर अंजाम पाती हैं। उज़दैन के मुताबिक अगर इस सिस्टम पर कोई फिजिकल साइबर हमला होता है तो जिन बोतल से बाहर निकल सकता है। इंटरनेट तक रसाई में रुकावटें, बैंकिंग अदायगी के निज़ाम में खलल, नकल हमल और हेल्थ सर्विसेज में रुकावटें जहन में आने वाले अवलिन नतायश में से हैं। बिलाशुबा इसमें रियासतों इंटेलिजेंस एजेंसियों का पहलू भी शामिल है। औजदान कहती हैं कि केबल लैंडिंग स्टेशन, डेटा कॉरिडोर, पैसोलिंक, सिग्नल इंटेलिजेंस और डेटा ट्रैफिक तजिए के जरिए स्ट्रेटेजिक मालूम हासिल करने का इम्कान पेश करते हैं। इसलिए ज़ेर समंदर केबल्स न सिर्फ इक्तसादी मुआसराती निज़ाम का एक अहम जुज़ बन गए हैं बल्कि सिक्योरिटी के बुनियादी ढांचे की हैसियत हासिल कर चुके हैं। लिहाजा यहाँ कोई भी मनफी वाकया तकरीबन दुनिया भर को मुतासर करने वाले नतज का बायस बनने के साथ साथ इंटेलिजेंस फौजी मुआसरात पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है। सबोताज का वाजिया मुतरा कुबरा उज़दैन निशानदेही की है कि सूरतेहाल महज शुमाली यूरोप के एजेंडे पर नहीं बल्कि आलमी सतह पर जियोग्राफी सियासी रकावत के अहम अनासर में से बोरा अहम व अपना हुरमस जैसे अवामिल काबिल जिक्र हैं। दोनों खित्ते तनाजा सबोताज खतरात काफी अया हैं। उज़दैन ने याद दहानी कराई है कि तारीख में पहली बार अपना हुरमस व बहरा अहमद दोनों को बैक वक्त तजारती आमदरफ के लिए अमनी तौर पर बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बहरा अहमद से गुजरने वाली 17 ज़ेर समंदर केबल्स अब यूरोप और एशिया अफ्रीका के दरमियान डेटा ट्रैफिक के एक बड़े हिस्से को सर अंजाम देती हैं। इन खितों की नाजगी की ठोस मिसाल के तौर पर जब सन 2024 में बहरा अहमद में हूसी हमलों ने 3 बड़ी तारें मुनक़ता कर दी तो इनकी मरम्मत में तकरीबन 6 माह लगे थे। औज़दैन कहते हैं इस तनाज़ में केबल के तहफ़्फ़ुज़ को महज हिफाजती इकदाम के जरिए यकीनी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने गुजरगाहों की मुसलसल से निगरानी, मशकूक समंदरी नकल हमल का तायुन, तेजी से मरम्मत की सलाहियत, मुतबादिल रास्तों को मज़ाहमत के ज़रूरी अनासर के तौर पर बयान किया है। तुर्किया भी इस मैदान में एक मुमताज अदाकार है। इन शरात में से एक जो हम हाल ही में अक्सर सुनते हैं वो ड्रिफ्टिंग है। इससे मुराद ऐसी जगह पर मशकूक तौर पर सुस्त होने वाला जहाज है जहाँ फाइबर ऑप्टिक केबल्स या एक अहम पाइपलाइन गुजरती है। समय को नक्शा साजी तस्वर किया जाता है। इस तरह की हरकत करने वाले नासर से फौरी तौर पर निपटा जाता है। इस वक्त बहरा शुमाली में ड्रिफ्टिंग में पिछले सालों के मुकाबले 52% इजाफा देखा गया है। बहरा चीन में 18,000 से ज्यादा बहरी जहाजों की सूरत हाल में होने की इतला है जो कि ड्रिफ्टिंग सरगर्मी में 88% इजाफा होने का मफहूम रखती है। लेकिन सारे हंगामे के दरमियान इस मामले की एक तुर्क जहद भी है। क्युब्रा उज़दैन ने वाजिया किया है कि तुर्की शोबे में डिजिटल खुद मुख्तारी को कौमी सलामती का मामला तस्वर करता है। इन्होंने इलाकी रियासतों के साथ तय कर 10 मंत्री दायरा इख्तियार के माहदों और आपदोस के मंसूबों की तरफ तवज्जो मबसूर कराई है। कहा है कि अंकर इस शोबे में एक मुमताज अदाकार है। बुनियादी खतरा अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तहरीबकारी हाइब्रिड खतरात के बरखिलाफ मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम न कर सके।